0: are listening to AWAS FM, the largest ethnic community radio station in Hampshire, broadcasting on 99.8 FM and DAB Channel 70. Everyone's talking about it.
1: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
3: All right, no problem. We're on the way. Hello,
2: there's a big fire in the end of the garden
4: centre. I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away.
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए hantsfire.gov.uk विजिट करें।
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: The technical issues is me.
8: The
7: any issues we have technically is always me. I'm the man who has to press the buttons.

रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: आपकी आवाज आपका रेडियो आपके शहर में आवाज FM.
1: After all the color blue, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
2: Hello, there's a big fire in the Garden Centre in Hammersworth.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: Could just be us saying we need a new jingle.
8: We need a new jingle, yeah. Better than that.

0: हाँ ये गाना भैया, ये तो मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट गाना है, मजा आ गया सुनने में, बहुत अच्छा।
1: Hello, there's a big fire in the end of garden center in Hammersworth.
2: I can see a massive black plume of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
4: All right, no problem. We're on the way.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
6: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
7: Awaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: One Wild Ride. Retro Rickshaw every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाए, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
4: I cannot figure out how to stop the genre of Pakistan pop playing in one of these feeders. So we may have to skip a few advert breaks or something. I don't know what we're going to have to do here, but we'll persevere on. But
5: I've just noticed your phone there, that BT one.
4: The old school
5: That's
4: one.
5: That's a nice phone.
4: That's
5: isn't
4: the studio
5: it?
4: Phone.
5: That's right, isn't it?
4: We don't turn that on.
5: Yeah. Does that, what number's that then?
4: Well, you put it on here.
5: Yeah.
4: On this feeder. But if you look behind, it says Mike Live. When the phone rings, that flashes up green. And then you're like, you have to put everything on hold, speak to someone. I just don't know what's going on. It's just confusing.

0: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWAS, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
4: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
5: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in
6: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
7: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
8: अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम।
8: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
7: हाँ जी शुक्रिया।
8: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से। मेहरबानी, तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ। बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्ञा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है,
7: और और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
8: बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज़ एफएम की टीम को।
7: थैंक यू वेरी मच।
8: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूँगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज़ एफएम को अपने एक फैमिली चैनल की तरह पाएंगे। इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियाँ खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
7: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,
8: आई लव यू ऑल।

0: लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: Awaz FM is supporting local radio.
3: Hello. My name is Hira Singh and... I have my son birthday today, and I for my son his song for Nusrat Fateh Ali Khan, Mahi Ve Tenu Yaad Kara, Mahi Ve Tenu Yaad Kara, Nusrat Ali Khan Sahab. Thank you.
4: Southampton's Community Radio, Awaz FM.

0: Hello friends, my name is Rahi Baines and I've come to remind you to listen to my radio show Kinare Kinare every Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. As usual, there is loads of music, masti and manoranjan for you. The program includes chutkle, funny poems and skits, Bollywood biographies, birthday bash, whereby I mention the names of all my Facebook friends who had their birthdays in the last 7 days, Zara Hatke, which is off the beaten track pieces of musical items, and a lot more. So see you next Tuesday between 11 a.m. and 1 p.m. here on Awaz FM.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden center.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
7: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.

0: From Woodmill to Woolston, from Netley to Northam, this is Ours
1: After
0: FM.
1: All the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden
3: centre. I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
6: All right, no problem. We're on the way.
7: Don't stop, never give up. Hold your head high and reach.
0: Hours FM 99.8. Hours FM.

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती हैं। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden center. Now I'm
2: going to see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: I hate people that drop litter. Really makes me angry. There's no shortage of bins around. Although, I'm going to say my piece on bins. Those new style bins that have the thing that you pull out.
8: Oh, yeah.
7: Is it me or I don't like touching a bin? Because right. You don't know what, you know, it's just disgusting. And you've got to actually pull this handle that all kinds of skanky people have touched. And it could have like rubbish residue on it. No, not for me. I'd rather take it home with me and put it in my own bin, which doesn't get collected.

अधूरा मैं, जो तू ही तो कुछ नहीं, तेरे लिए इंसान क्या, तूफान से जाके मैं भिरू, चट्टान का चूरा करूं,

0: होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं, बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसानात से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
1: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
3: All right, no problem. Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website hoursfm.co.uk.

0: Bonjour, c'est Abbas Hassan et vous écoutez bien Awaz FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं मगर फिर भी थैंक यू Thank you, Ma.

0: Bonjour, c'est Abbas Hassan et vous écoutez bien Avaz FM.
1: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाहकुन नताइज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
4: The technical issues is me.
5: The
4: any issues we have technically is always me. I'm the man who has to press the buttons.

0: Your voice in your community. This is 99.8 Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM.
1: Hello, there's a big fire in the end of Garden Center in Hammersley.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाए, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: All right, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए। आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: Two straight hours of sports nerds talking about every kind of sport imaginable. Start game.
8: Hi, I'm
9: Coxie. Hi, I'm Naughty.
8: We are
9: the Behind the Mic Show.
8: Tune in every Monday
7: from 1 till 3
9: for our sporting waffle and absolute nonsense.
7: We're going to be talking about sport, sport, sport.
8: On Awaz 99.8 FM.
10: Passport ready hai? Visa lag gaya? प्लेन खड़ा एयरपोर्ट ते मैं चली तनु छड़के

0: Awaaz FM is supporting local radio.
1: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
2: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: Please.
5: All right,
6: no problem.
5: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
7: We need a new jingle, yeah.

0: आवाज वालों ने हमें तो लूट लिया, रेडियो आवाज वालों ने, वाह वाह यही बोलना था मेरे को।
1: नेस्कैफे बेसमेंट सीजन 5 जागना तो पड़ेगा।

0: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersworth.
2: I can see a massive black plume of smoke.
3: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
4: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
5: لائٹ ہاؤس انٹرنیشنل چرچ کی جانب سے
6: ہفتہ وار مسیحی پروگرام نور خدا
7: ہر جمعرات صبح 8 to 9
8: نور خدا
9: ہر ویروار سویرے 8 to 9 تک
10: نور خدا
5: آواز ریڈیو 99.8 ایف ایم پر
11: نور خدا
12: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

0: From the South's premier city, this is Hours FM 99.8.
1: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in Hammersley.
2: I can see a massive black column of smoke. I'm at least a mile away and I can see the smoke.
3: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
1: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
4: All right, no problem. We're on the way.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
6: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
7: चलते हैं पाकिस्तान लाइन पर हैं अजमल शोबी.
8: अस्सलाम वालेकुम.
7: वालेकुम सलाम.
8: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
7: हां जी शुक्रिया.
8: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ एफएम और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से मेहरबानी तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ बहुत मज़ा आ रहा है बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत कहते हैं मिला जुला सा माहौल होता है जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है और ओके बनता है
7: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन ये एक काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो हमारी बात हो और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है
8: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को
7: थैंक यू वेरी मच
8: बस थैंक यू वेरी मच और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूं कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहां पर उन सब के साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे बच्चों के मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं तो बस इसी दूरी के साथ इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिंदगी बखैर
7: थैंक यू वेरी मच जी टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय
8: आई लव यू ऑल

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: Hello, there's a big fire in the end of the garden center in Hammersworth.
3: I can see a massive black column of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
2: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
1: All right, no problem. We're on the way.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
7: हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्टॉकहोम स्वीडन। This is Elton's mother. I just want to say it's amazing to hear your voice on the radio. I'm so proud of you. I love you. I miss him. And I'm so excited to come to Southampton for a week.

0: ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ।
1: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff. जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit handsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right,
4: no problem.
3: We're on the way.
4: Awaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ. आशा भोंसले एंड किशोर कुमार वर सिंगिंग फ्रॉम द फिल्म अपराध. नाउ इट्स टाइम टू लिसन टू सम चुटकुले, सम फनी एनेक्डोट्स विद कपिल शर्मा. एंड टुडे ही इज टॉकिंग अबाउट गेस्ट्स एंड आइडल पीपल, वेले लोग जो होते हैं वो.
2: गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं. अच्छा, गर्मियों की जैसे छुट्टियां शुरू होती ना, घमोरियों से उतना डर नहीं लगता जितना मेहमानों से लगता है. क्योंकि घमोरियों के लिए तो फिर भी सूखा पाउडर आता है. मेहमान जब तक आपका घी नहीं निकालते ना, जाते नहीं है. अच्छा, जो लोग ठंडी जगह पे रह रहे होते ना, उनको गर्मियों में सबसे ज्यादा फोन आते रिश्तेदारों के.
3: हमारे
2: है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड से फोन आएंगे रात को 11 बजे. और भाई, हाँ भाई गुड्डू, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, हाँ तेरा फूफा जानकी दास, हाँ बड़े दिन हो गए भाई. आजकल तेरी पोस्टिंग शिमला में है ना, बंदा भी टालता है. हाँ एक्चुअली ठंड बड़ी हो गई, अब आपसे एडजस्ट नहीं हो पाएगा. वो फिर और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हैं अपना. अच्छा, मैं तेरी बुआ के साथ इतने साल एडजस्ट कर गया, ये ठंड क्या चीज है. अच्छा, जो छोटे शहरों से कभी कभी आते हैं, जिन्होंने पहली बार एस्केलेटर देखा होता है, बड़े शहरों में जब कोई मेहमान आता है तो उनको मॉल घुमाने ले जाते हैं. क्योंकि छोटे गांव में तो मॉल होते नहीं है. वो बेचारे एस्केलेटर से बड़ा डरते हैं कि कौन सी चीज पहले रखनी है. वो बेचारे भोले होते हैं पहले पर, क्या पहले तो समझ नहीं आता क्या, पहले उनके एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं लिफ्ट को देख के. उसके बाद फिर टाइमिंग खराब होती है. पहले हाथ रख, फिर हाथ खींच जाता है, हाय. फिर पैर रखते, पैर निकल गया, हाय. फिर कोई उनको पीछे से धक्का देता, मौसी चढ़, हाय. बेचारे पड़े उनके साथ. अच्छा, मेहमान दो तरह के होते हैं. एक तो होते हैं जो बता के आते हैं, एक होते हैं जो बिना बताए ना सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं आपके घर में. अरे सर्जिकल स्ट्राइक वाले जो मेहमान होते हैं ना, तैयार होने का मौका भी नहीं देते. आदमी संडे का दिन है, बालों में डाई लगा के बैठा है, आराम से धूप सेक रहा है या टीवी देख रहा है. तो ऐसे में बेल बजती ना ठम करके, तो आदमी पहले तो खिड़की से देखता है. अगर तो बूढ़े बड़े रिश्तेदार हैं तो फिर तो चला जाता है खोलने. अगर साथ में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, पहले बाथरूम में इतनी तेजी से निकलता है जैसे रेड पड़ गई हो, फिर वो रेडी होकर बाहर निकलता है आ गए. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंबई आकर अभी थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन रिश्तेदार उनके अब भी देहाती हैं. तो फिर रिश्तेदार क्या करते हैं, रात को जब सोने का टाइम आता है, फिर ये अपना कुर्ता निकाल के ना, मोनालिसा की पेंटिंग नहीं टंगी रहती यूं करके, उसके ऊपर डालते हैं. तो सारी रात बदबू वाला कुर्ता टंगा रहता है. सुबह मोनालिसा जो यूं करके होती है ना, सुबह यूं खड़ी होती है. अच्छा, अपना बच्चा अगर घर के बेड पे थोड़ा सा पानी भी गिरा दे ना, तो माँ बाप थप्पड़ लगा देते उसको. मेहमान का बच्चा आके सुस्ती भी कर दे ना, अंदर से गुस्सा तो बड़ा आता है, ऊपर ऊपर से बोलते बच्चे हैं, निकल आता है, अभी क्या करें. आप देखना, मेहमान जब नया नया आता ना आपके घर में, तो पहले पहले दिन बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां बनती है. पहले पहले पनीर बनेगा, चिकन बनेगा. दो चार दिन एक्स्ट्रा रुक जाए, फिर भिंडी गोभी आना शुरू हो जाती है. फिर दो दिन और रुक जाए, फिर पानी वाली दाल आनी शुरू हो जाती है. फिर मेहमान चपाती तोड़ता है, खुद दाल ढूंढता है. और एक दिन और रुक जाए, फिर सब्जियां तो आने की दूर की बात, फिर किचन में से गालियों की आवाज आती है. फिर मेहमान समझ जाता है कि अब मेरी एक्सपायरी डेट आ गई है. अरे कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, माँ बाप ज्यादा खाने पीने को नहीं देते ना कोल्ड ड्रिंक. जब मेहमान आते ना तभी ये फैलते हैं, कोल्ड ड्रिंक तेरा पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक भावा बोल देते हैं. माँ बाप अरे अरे पहले मेहमानों को पीने दो. मेहमान तो बोले देते, अरे कोई बात नहीं बच्चा है पीने दो. अरे नहीं नहीं ये तो पीते रहते हैं. बच्चे फिर सबके सामने पोल खोलते हैं, कहाँ पीते रहते हैं. वो आपकी बेइज्जती मेहमानों के सामने करेंगे. अब छोटे शहरों में जाओगे ना, आपको वेले लोग बड़े मिलेंगे जिनको कोई खास काम नहीं रहता. अच्छा, ऐसे लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं. कहीं गन्ने की ट्रॉली निकल रही है ना, उसके पीछे लटक जाते हैं. उधर 2-3 किलोमीटर दूर चले जाएंगे. फिर उसके बाद वापस वहां से कोई आ रही है, उसके पीछे लटक के वापस आ गए. पूरा दिन इसी में निकल जाता है. अच्छा आप कुछ लोग इतने वेले होते हैं इनके दांत में कुछ अटक जाए ना, किसी ने कुछ चिकन खा लिया या कोई ऐसी चीज खा ली, सारा सारा दिन ये नहीं कि फटाफट टूथपिक लेके निकालो, पूरा पूरा दिन उससे खेलते रहते हैं।

0: I'm John Denham. You're listening to Hours FM.
1: Southampton's community radio, Hours FM.
2: जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में. आशा भोंसले एंड किशोर कुमार वर सिंगिंग फ्रॉम द फिल्म जख्म. यू आर लिसनिंग टू माय मैगजीन शो किनारे किनारे. आई एम राही बेंस एंड दिस इज आवाज एफएम. किनारे किनारे कम्स टू यू हियर ऑन आवाज एफएम एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 11 o'clock इन द मॉर्निंग अंटिल 1 o'clock इन द आफ्टरनून. नाउ इट्स टाइम फॉर सम शेरो शायरी. And here is Anjum Rehber reading her poem called It Is Difficult to Wait for Your Loved One. Enjoy it.
3: अगर मोहब्बत होती है तो जुदाई भी होती है. और जुदाई का वो जो शेर आपने कहा है, मैं चाहूंगा वो गजल जरूर सुना.
4: जी मैं बिल्कुल सुना देती हूँ. तेरा वादा ना पूरा हुआ, शाम से फिर सहर हो गई.
3: हाय हाय, वाह वाह,

0: गई। और जो शेर मुझे सुनाना है
1: जी,
0: दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेश की नौकरी,
1: क्या बात है,
0: वो भी पागल उधर हो गया, मैं भी पागल इधर हो गई। घर

0: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
1: Mohabbat rang lati hai magar ahista ahista. Anwar and Asha Bhonsle were singing from the film Ahista Ahista. You're listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Baines and this is Awaz FM. Kinare Kinare comes to you here on Awaz FM every Tuesday from 11 o'clock in the morning until 1 o'clock in the afternoon. And Awaz FM comes to you here in Southampton on 99.8 FM and throughout the Southern Hampshire, especially in Portsmouth and the Winchester areas. You can listen to us on the DAB radio. Anywhere else in the world, just log on to awazfm.co.uk and listen live and also listen back. Now it's time for a Bollywood biography. And today, I have selected the biography of Utpal Dutt for you to enjoy.
2: ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने हर दिशा में नाम कमाया।
3: फिक्र मत कीजिए, मैं किसी भाषण से आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, बल्कि सीधा उस काम पर आ जाऊंगा जिसलिए मुझे बुलाया गया है।
2: वो नाटक का लेखन रहा हो, निर्देशन रहा हो या फिर अभिनय, रंगमंच रहा हो या फिर फिल्म का पर्दा।
4: मैं राजा महाराजा होता तो 21 तोपों की सलामी देता, मगर तोपे तो है नहीं और मैं एक रिटायर्ड कर्नल हूं।
2: हर जगह उत्पल दत्त ने नई ऊंचाइयां कायम की।
5: अबे बंद मुट्ठी लाख की खुल जावे तो खाक की, जोरावर सिंह का समधी जेल चला गया तो मेरी इज्जत का जुलूस निकल जाएगा।
2: उत्पल दत्त साहब का जन्म 29 मार्च सन 1929 में बरिसाल इलाके में हुआ। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने की सेंट एडमंड स्कूल शिलोंग से और उसके बाद 1945 में सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल कोलकाता में इन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी की। 1949 में इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स की डिग्री हासिल की सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से ही। फिल्मों में आने से पहले उत्पल दत्त साहब बंगाली रंगमंच पे अपने जौहर दिखा रहे थे, पर शुरुआत इन्होंने अंग्रेजी थिएटर से की थी।
6: What's happened to our meeting with Huaminaji? Tomorrow. Make it the day after, will you? Thank you very much.
2: ये मात्र 16-17 साल के थे जब थिएटर के प्रति इनके जुनून ने बनाया द शेक्सपियरियंस थिएटर ग्रुप।
7: मुझे तो कोई भी नहीं भूल सकता। नहीं। मैंने इंदर सभा ड्रामे में नीलम परी का पार्ट किया था, आपको तो याद होगा।
8: अरे हाँ, कौन है आप?
2: उस जमाने के मशहूर रंगकर्मी जॉफ्री केंडल और लॉरा केंडल, जो आगे जाकर महान अभिनेता शशि कपूर के सास ससुर बने। इन दोनों ने ही उत्पल दत्त की परफॉर्मेंस देखी थी शेक्सपियर के नाटक रिचर्ड III की, और उस अभिनय से ये दोनों ही कलाकार इतने मुतासिर हुए कि फौरन इन्होंने उत्पल दत्त को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया अपनी थिएटर कंपनी शेक्सपियराना में। और जब जॉफ्री केंडल हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, तब उत्पल दत्त साहब ने उस ग्रुप का नाम बदला और रखा लिटिल थिएटर ग्रुप।
9: अरे ससुरी, इन कपड़ों में तू तो बड़ा गजब ढा रही है।
10: ऐसा ना ही बोला कर बापू, हमका शर्म आवत है।
2: तकरीबन 3 साल लगातार ये इब्सन, शॉ, टैगोर, गोर्की और कॉन्स्टेंटीन के नाटकों का मंचन करते रहे। और उसके बाद उत्पल दत्त ने कुछ साथियों के साथ मिलकर इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे इप्टा के नाम से हम जानते हैं, ये बनाई। पर 2 साल के बाद ही ये इप्टा से जरा दूर हो गए।
11: का मतलब किशोर की जान को खतरा है?
12: सिर्फ किशोर की ही नहीं, हम सब की जान को खतरा है। उसने कहा है मैं अभी पुलिस में जाकर आप सब के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाता हूँ।
11: गिरफ्तारी?
2: 40 की दहाई में मूलतः उत्पल दत्त रंगकर्मी ही रहे, और थिएटर के साथ साथ जो कोलकाता के साउथ पॉइंट स्कूल में बतौर अंग्रेजी टीचर काम करते रहे। उत्पल दत्त एक मार्क्सिस्ट थे और समाज के दबे कुचले वर्ग के प्रति इनकी संवेदना इनके अंदर के कलाकार को झकझोरती थी, और इसीलिए सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने थिएटर को एक अलग रूप दिया।
6: कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है।
2: एक तरफ एक सामाजिक क्रांतिकारी और दूसरी तरफ एक कलाकार, इन दोनों ही भावनाओं के साथ उत्पल दत्त अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। सन 1950 में इन्होंने फिल्म माइकल मधुसूदन में काम किया, और वो फिल्म भी इन्हें इसीलिए मिली थी क्योंकि उत्पल दत्त ने ओथेलो की भूमिका जबरदस्त अंदाज में निभाई थी। फिर वो वक्त भी आया जब इन्होंने मुंबई या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। शुरुआत में इन्हें बतौर विलन लिया गया।
6: जोश में आकर तुमने हमारे खिलाफ जुबान खोली तो ये फोटो अखबार में छप जाएगा।
13: साहब 12 साल तक अपना बदला लेना नहीं भूलता तो दीवान सिंह 24 साल तक।
2: पर बाद में इनकी कॉमेडी ने सबकी छुट्टी कर दी।
14: बहुत उच्च दर का लेखक हैं, ठीक है ना?
15: ऊंचे दर्जे का।
14: हाँ हाँ, ऊंचे दरवाजे का।
2: उत्पल दत्त की टाइमिंग, उत्पल दत्त की आवाज, इनका अंदाज सबसे आलायदा रहा।
16: Don't tell me, I know.
17: ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए वो करने वाला हूँ जो आप जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकेंगे।
2: इनके कॉमिक रोल्स देखकर उस वक्त लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इनकी शख्सियत खासी संजीदा है, और ये बड़े ही संजीदा नाटक लिखते हैं। हिंदी सिनेमा इन्हें नाम के साथ साथ पैसा भी दे रही थी, पर इनके अंदर का सामाजिक क्रांतिकारी समाज को बदलने में लगा था। अपने मार्क्सिस्ट विचारों की वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 2007 में ऋतुपर्ण घोष ने एक फिल्म बनाई जिसके मेन लीड थे अमिताभ बच्चन। फिल्म का नाम था द लास्ट लेयर, और ये फिल्म उत्पल दत्त साहब के नाटक आज के शाहजहां पे आधारित थी। ये भी माना गया कि ये नाटक दत्त साहब ने अपने जीवन से प्रेरित होकर लिखा था, और अमिताभ बच्चन उत्पल दत्त की रियल लाइफ उतार रहे थे सिल्वर स्क्रीन पर।
18: तुम जब कोया कोया अटैची को ब्रीफ केस दे रहे थे, किसी कोने से कैमरा तुम्हारी तस्वीर ले रहा था।
2: उत्पल दत्त साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि सन 1960 में इन्होंने विवाह किया सह अभिनेत्री शोभा सेन से। इनकी फिल्म भुवन शोम और 90 के दशक की फिल्म आगंतुक, 80 के दशक की गोलमाल और 1987 की फिल्म रंग बिरंगी को कोई भुला नहीं सकता।
15: क्या बताऊं सन्याल साहब, आपकी पिक्चर देखने के बाद तो मैं आपका फैन हो गया।
2: फिल्म दो अनजाने में भी इनका अभिनय देखते ही बना था।
14: क्यों तुम्हें बंगाली पिक्चर बनाने का शौक हुआ है? बंगाल से लगाव है। बोलो, बंगालन सुनीता देवी को देखकर तुम्हारा माथा होता घूर गया?
2: 19 अगस्त सन 1993 में कोलकाता शहर में उत्पल दत्त साहब का निधन हो गया। उत्पल दत्त एक संपूर्ण कलाकार रहे, और भारतीय कला जगत में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
0: This is Hours FM, online and on digital DAB radio from Southampton.
1: That was the Bollywood biography of Utpal Dutt. You are listening to my magazine show Kinare Kinare. I am Rahi Baines, and this is Awaz FM. In about 10 minutes' time, we'll have our friendly quiz called Name the Film. Film ka naam kya hai? In this friendly quiz, I will play to you the title music of a film. And all you have to do is identify the film. Mind you, because this is a friendly quiz, I will give you some clues as well to help you. That is coming up shortly. But before that, Chandni Raat Hai, Tu Mere Saath Hai. Here is a duet sung by Kavita Krishnamurti and Abhijit, taken from the film Baghi, A Rebel for Love, which was released in 1990. The music is composed by Anand Milan, and Sameer wrote the words for it. This song was picturized on Salman Khan and Naghma. Enjoy.

0: वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं जी, बैठे हैं बिल्कुल, आपका मैसेज भी आ रहा है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जो बैठे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिल्म चकोरी से आपने सुना है मुजीब आलम की आवाज़, और इस वक्त तशरीफ़ फरमाए हैं जी हमारे साथ द वंडरफुल शायरा जी, मिस शेख जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं
0: जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। कैसा है आपका दिन और कैसी है तबीयत आपकी, सब ठीक?
1: बस अच्छा मौसम हो गया, थैंक्स गॉड कि मौसम ने करवट बदली है। अच्छा। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी बर्दाश्त की है खुदाया।
0: चलो कोई बात नहीं,
1: उम्मीद है कि आपकी महफिल के सभी लोग ठीक ठाक होंगे, उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम।
0: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, बहुत शुक्रिया जी आपका, पहुँच गया सलाम आपका जी।
1: जी मैं शायरी आपकी नज़र और आपकी महफिल की नज़र करती, जो बड़े प्यार से आपको सुनते हैं। कुछ यूँ है कि कितनी नायाब थी खामोश चाहत उसकी, कि आज वो पास नहीं है, हसरत है उसकी, इश्क देते हैं आंखों से तो लगता है दिल में जैसे उतर आई सूरत उसकी।
0: माशाल्लाह जी,
1: वो रोशनी का चमकता है मेरी आंखों में, वो खुशबू सब बसता है मेरे आंगन में, नहीं अल्फाज मेरे पास कैसे बयां करूं जो उसका प्यार धड़कता है मेरी धड़कन में।
0: क्या बात, बहुत खूब,
1: थैंक यू। जिनसे रूठ जाती है रूह अपनी, कैसे मुमकिन उनसे खफा होना, उनकी सांसों से वाबस्ता जिंदगी अपनी, सोचो बड़ा मुमकिन है उनसे जुदा होना।
0: जी,
1: बिखरे अशकों के मोती हम परो ना सके, तेरी याद में सारी रात सो ना सके, बीत जाए कई आंसुओं में तस्वीर तेरी, बस ये सोचकर हम रो ना सके।
0: जी बहुत खूब,
1: कोई वादा नहीं फिर भी इंतजार है, जुदाई के बावजूद भी तुझसे प्यार है, तेरे चेहरे की उदासी दे रही है गवाही, मुझसे मिलने के लिए तू भी बेकरार है।
0: वाह बिल्कुल दुरुस्त जी।
1: राम ने हंसने ना दिया, जमाने ने रोने ना दिया, इस उलझन से चैन से जीने ना दिया, थक के जब सितारों से पनाह ली, नींद आई तो तेरी यादों ने सोने ना दिया।
0: बहुत
1: कुछ हर रात कुछ यूं है कि अपनी हस्ती मिटा के भी तन्हा हूँ मैं, सब कुछ लुटा के भी तन्हा हूँ, लोग दूर तक जाते हैं किसी के लिए और मैं इसके पास रह के भी तन्हा हूँ। उसके बाद है कि तेरे बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ, लेकिन तेरे बारे में सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता, मैं अब इस चाहत की इस मंजर पे आ पहुंची हूँ कि तेरी जानब किसी का देखना अच्छा नहीं लगता।
0: बहुत खूब,
1: मुझको पाने की तमन्ना थी पूरी ना हो सकी, कोई हसरत ही ना रही हसरत नकाम के बाद, जिस शाम को तू मुझसे मिला था आकर, शाम वैसी आई नहीं उस शाम के बाद।
0: बहुत खूब,
1: सारी गजल यूँ है कि माना कि मुश्किल है उसे अपना बनाना, मगर आंखें चाहती हैं उसका सपना सजाना, दिल में जलते हैं उसके नाम के दिए, जुबान को आता है फकत उसके प्यार का तराना, मैं मोहब्बत यो ये अनजान रास्ते, मुझे समझ ना आ पाए कोई मेरा अजीब सा फसाना, मालूम है इश्क हमें मुंह के पर गिराएगा, बस अंदाज नया लेकिन अंजाम वही पुराना, गाल तो मैं हूँ मगर अब लब सिले हैं, क्या करें आता नहीं हमें जख्म दिखाना, वो मेरी सोचों में रहता है ख्याल बनकर, मेरे लिए मुमकिन नहीं इसे भूल जाना। थैंक यू टाइम देने का, और ये आ जाते हुए अच्छी बात के साथ इजाजत चाहूंगी
0: जी।
1: कुछ यूँ है कि उस शख्स के लिए मत रोना जो तुम्हारे आंसू ना पहुंच सके
0: जी,
1: क्योंकि वो शख्स तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हें रोने नहीं देगा।
0: वाह क्या बात, बहुत खूब।
1: अब गीत गुनगुनाती हूँ
0: जी, बिस्मिल्लाह।
1: कुछ यूँ है कि जब कोई बात भी कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा तो हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। बस ये कहना चाहूंगी, थैंक यू टाइम देने का, खुदा हमेशा आपको खुश रखे और ये खूबसूरत महफिल इसी तरह सजती रहे, हम सब लोग आपकी महफिल में आते जाते रहे, थैंक यू टाइम देने का, अल्लाह हाफिज़
0: जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा बोल भी, बड़ा अच्छा गीत भी आप सुना के बता के चले गए। लेकिन सुनते हैं, यही फिल्म का नाम है जुर्म, और साधना सरगम के साथ हैं कुमार सानू।

0: जब कोई बात बिगड़ जाए तो मेरा साथ देना जी, ऐसी बात है। कुमार सानू और साधना सड़कों की आवाज़ थी जी, फिल्म थी जुर्म। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिसेस शेख, आप लाती हैं तशरीफ़ जी, बड़े अच्छे अच्छे गाने भी पेश करती हैं। आपके गाने को जनाब राज राम जी बड़ा खूब सराह रहे हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। राज राम जी नमस्कार
1: भाई, क्या गाना भाई मिसेस शेख ने बना भेजा हुआ था, और उसने गुनगुनाया तो मैं भी साथ में गुनगुनाता था।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लगा। अभी भाई अशोक भैया भी आ गए यार, तो बहुत हम तो सबसे पहले आ गए, क्या बात है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हंसों के बाद पिछले हफ्ते भी आए थे और बड़ा अच्छा लगा हमें। आप तो जानते हैं कि उनकी चॉइस भी बड़ी बाहर होती है, मतलब इससे पहले नहीं नहीं इससे पहले कहीं और जाएं जी, ज़रा जो मिसेस शेख ने गुनगुनाया ज़रा राज राम जी, ज़रा आपकी आवाज़ में भी हो जाए ना थोड़ा सा, कैसे था बोला यारा जरा सुने तो।
1: जब देना साथ मेरा तुम नवाज़, क्या गाना बजाया, बहुत अच्छा गाया चूज किया।
0: मैं कहता हूँ जी, मैं तो कुर्सी में एकदम घूम गया हूँ, यानी एक तक की बड़ी मज़ा। बहुत शुक्रिया
1: भाई। देखो अभी थोड़े बहुत जैसे क्या वो बाथरूम के गुनगुनाने वाले में है, बाथरूम में गुनगुनाते हैं।
0: नहीं गुनगुना लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, अगर कोई कहे कि जरा नाच भी लो तो उससे लिए जरा कमर जो है वो थोड़ी नाजुक है, बाकी सब ठीक है। जी
1: हमारा यार कहाँ है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना।
0: आपकी आवाज उनके कानों पे पहुंची तो शायद पहुंच जाए, बड़ी बात नहीं। अब उनका
1: आ जाएगा भाई, हमारी बहना भी अभी आती, बहुत टाइम हो गया अभी आई नहीं है बहना, आपको कुछ सुनाओ
0: भाई। वो फरजाना की बात से कर रहे हैं आप, पता नहीं यार क्या हो गया, खुदा खैर ही करे।
1: अभी आ जाएंगे भाई, कोई भी सभी मशगूल होते हैं भाई अपने अपने काम में भाई।
0: बिल्कुल
1: तो थोड़ा दुख भी, वेदर भी अच्छा है तो सर कोई काम काज में रह जाते हैं बस, और क्या।
0: सही बात है, और वैसे इन दिनों में पता चला है कि ये वेदर तो वाकई ऐसा है, मगर इससे बहुत सारे साथियों को वो हो गया फ्लू, क्या कहते हैं उसको,
1: है फीवर। बहुत गर्म था।
0: तो इसलिए भी कुछ है, तो साईं की दिली दुआ है जी कि वो बीमार हैं कि जहाँ भी कोई परेशानी में अल्लाह ताला दूर फरमाए। और सबसे बड़ा मजा कि आप आ गए हैं, बड़ा अच्छा लगा, आपकी तबीयत बहुत अच्छी हुई,
1: थोड़ी बेहतर है। बीमारी है लेकिन थोड़ा बहुत चलता, ये गाने का शौक है।
0: बिल्कुल
1: ऐसा लगता है कि नहीं जाते हैं तो थोड़ा क्या होता है, अपना दिल खुल जाता है,
0: बिल्कुल
1: लगता है, खुशी हो जाती है, मजा आता है।
0: योर मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम जी, आप भी और बाकी जो सुन रहे वो भी। आज क्या गुनगुना रहे हैं हमारे लिए फिर बताइए
1: भाई। हम तो क्या गुनगुनाते,
0: नहीं नहीं ये वैसे तो जो गुनगुना दिया आपने उसका तो जवाब ही नहीं, पर फिर भी क्या करूं जी, मेरा दिल करता है आपसे और सुनने का, क्या करूं बताइए। अच्छा सुनाइए,
1: तुम देना साथ मेरा आए दुआ,
0: बहुत
1: ना कोई था ना कोई है तुम्हारे
0: सेवा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब
1: ना साथ मेरा,
0: क्या बात है, क्या बात है जी जी, जी।
1: बस यही गुनगाते हैं ऐसे, वैसे भी थोड़ा सा मजा आता गाने में, बहुत सुनने में।
0: कोई चलो
1: मैं भाई मेरा गाना अभी गुनगाता सबको, सब राहत देता होगा, मेरा भी गई भाई राज राम जी कहाँ लग गया कोई दूसरी गाने में, अभी मेरा मुकेश का गाना ही बात है हमारा।
0: जी जी जी,
1: फिल्म का नाम है कभी कभी
0: जी,
1: और मुकेश का गाना है, और ये लंदन का मुकेश आज बोल रहा है, थोड़ा तबीयत ठीक है तो मजा
0: शुक्र,
1: आता है।
0: शुक्र शुक्र शुक्र शुक्र, बिस्मिल्लाह जी,
1: थैंक यू
0: वेलकम जी।
1: मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है,
0: क्या
1: मैं पल दो पल का शायर हूँ।
0: बहुत
1: ये घर सबको सुनाना मेरे पास, मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ।
0: खुदा खुश रखे जी, खुदा आपको भी खुश रखे, सब सुनने वालों को खुश रखे,
1: सभी को थैंक यू,
0: मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम राज राम जी, थैंक यू वेरी मच जी। सहबाइन ये थे हमारे भाई राज राम जी, गुनगुनाते भी हैं तो कमाल कर जाते हैं, किसी का गाना अच्छा लगे तो बता भी देते हैं, तो आप भी बता दिया करें ना, जहाँ कहीं हैं ज़रूर बताएगी। वैसे आज तो हमें और बहुत खुशी है कि वो थोड़े से बेहतर भी हैं और आ गए हैं और बता गए हैं। कहते हैं मैं पल दो पल का शायर हूँ, अच्छा जी मुकेश की आवाज़ है, और सुनते हैं फिल्म कभी कभी से। हाज़िर खिदमत सर।

मैं पल दो पल का शहर हूँ जी, ये सुन रहे थे जी आप। फरमाइश जनाब राजराम जी की, और फिल्म थी कभी कभी, मुकेश की आवाज़ थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मिस्टर पटेल जी, मैं भूलता नहीं हूँ, आप आ गए, पहले थे आप, सबसे पहला टैक्स बल्कि आपका मिला, पर इतफाक़ से तीसरे नंबर पर आपका गाना आ रहा है। आपका गाना आ रहा है जी फिल्म लैला मजनू, दास्तान है लैला मजनू फिल्म का नाम है। समन कल्याणपुर साथ दे रहे हैं मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी। कहते हैं जी, आया तेरे दर पे सवाली।

तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत जी, आपने सुना फिल्म जिद्दी में, मोहम्मद रफ़ की आवाज़ है। आइए सुनते हैं एक और गाना, शमशाद बेगम आशा भोसले ज़रा मिल के गा रही हैं ज़िंदगी या तूफ़ान, फिल्म का नाम है। कहती हैं जी, बड़ी मुश्किल से हम समझे हमें वो क्या समझते हैं।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
2: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sail Away Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sail Away Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of faff.
3: वेलकम सहीमीन, आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, कहना पड़ेगा कि राजराम जी आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत अच्छा लगा जी। आप तो कहते हैं जी करार ही आ गया, मुझे भी करार आ गया, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया जी। यही सुनाते हैं आपको शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म नगमा।

0: बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। जी सुन रहे थे आप शमशाद बेगम को, फिल्म थी नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप आ गई हैं जनाब यास्मीन बानो जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़कर जी हमारी शायरा आ रही हैं जनाब पिंडी पाकिस्तान से, जनाब मैडम कोकब अली जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं
0: जी? खुदा का बड़ा शुक्र है, खुश आमदीद आपको जी प्रोग्राम पे। इस वक्त आप लाइव हैं और आप तशरीफ फरमा हैं, बहुत अच्छा लगा जी।
1: आपके असल में मैं दो ही प्रोग्राम सुनती हूँ, तो मैं अगर दोनों का कंपैरिजन करूँ तो इस प्रोग्राम में आप मुझे ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं। अब इसके अलावा सुनूंगी तो फिर तीन चार प्रोग्रामों का तजिया करके बताऊंगी।
0: इतना आपके पास वक्त ही कहाँ है, पर कोशिश कीजिएगा जरूर, कभी इत्तेफाक हुआ तो जरूर सुनिएगा। वक्त जो है ना जी,
1: मेरा काम ये है
0: जी, ये बात है जी, पर एनीवे जरूर सुनिएगा, जरूर बताइएगा। कहीं कोताही जहाँ कहीं भी हुई जरूर उसको खास तौर पर बताइएगा जरूर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कोताहियां दूर हो।
1: नहीं नहीं, कोताहियों की तो बात ही नहीं मैं कर रही, मैं तो वो तबीयत की बात कर रही हूँ, एक्टिवनेस की बात कर रही
0: हूँ। नहीं बस वो आज थोड़ा सा बेहतर हूँ, कभी कभार ऐसा होता है। अब राज राम की जैसे फरमाते हैं, हम जितने हो गए ना जवान, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं है, हवा से भी बिगड़ जाती है आगे पीछे। तो एनीवे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर साथी आते हैं जी, उनकी बात सुनते हैं हम भी खुश हो जाते हैं, वो भी खुश होते हैं माशाल्लाह। तो थोड़ी सी तबीयत में तो फ़र्क आता ही है ना, आप तो जानती ही हैं।
1: असल में ये जो आपके पास प्लेटफॉर्म है ना, ये मतलब उस तरह तो कम्युनिटी के लिए है, लेकिन असल में जो प्रेजेंटर होता है ना वो उसके लिए ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि प्रेजेंटर के पास करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं।
0: जी,
1: क्योंकि एक बंदा जो होता है वो क्योंकि सबकी सुन रहा होता है, तो उसके पास ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है और उसने बहुत सारे एरियाज में काम करना होता है, उसने सुनना भी होता है, उसने कहना भी होता है, उसने सुनाना भी होता है।
0: काश
1: वो मल्टीपल टास्क जो है ना, वो तो आप अंजाम देते हैं।
0: काश हमारी एबिलिटी ऐसी हो जाए जैसी आप चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।
1: नहीं मैंने देखी है तो मैंने कही है, चाहने की तो बात ही नहीं हो रही।
0: अच्छा, चलो
1: तो मैंने देखा है तो मैंने आपकी काबिलियत की तारीफ की है।
0: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला काबिल इंसानों को काबिल ही नज़र आते हैं सारे। बहुत शुक्रिया आपका, आप भी किसी काबिलियत की मोहताज नहीं है माशाल्लाह। राइटर भी हैं और मुसन्निफ भी हैं, कई किताबों की इशारा भी हैं, और जितनी काबिलियत आपकी है इतनी तो मैं नहीं कह सकता, पर आपकी नज़र में कुछ है मुझ में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो साथी समझते हैं ऐसे, खुदा करे ऐसा बन ही जाऊँ मैं, थैंक यू वेरी मच।
1: नहीं वो बनने के लिए जो है वो उम्र की कोई कैद नहीं होती, मतलब तालिबे इल्म के लिए उम्र की क्या कैद होती
0: नहीं
1: है?
0: वो सीखते तो है ना, इंसान सीखता रहता था जिंदगी सीखता जी। सही बात है। आज क्या लाए हमारे लिए, कोई नज़म जरूर लिखी होगी आज आपने?
1: हाँ जी, मैं नज़्म लाई हूँ और मुझे इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा।
0: अरे यूर मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम मैडम, बहुत अच्छा लगा आप ये सुन के। हालांकि बहुत कुछ है, पर चलो आपकी नज़र में ये आपकी ज़ुबान भी ये बात आई, अच्छा लगा मुझे भी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सब को काबिलियत दे और हर एक को खुश रखे। और यहाँ तो मेरे प्लेटफॉर्म पर तो जी हर एक के लिए वेलकम है, दरवाज़ा खुला है, ज़रूर तशरीफ़ रहें। और जहर है किसी जगह पे आप जाएंगे पता चलेगा, तो तभी साथियों को भी पता चलता है और कलाम अपने अपने जो है उनको भी पता चलता है, जैसे चला चल रहे होते हैं उसका भी पता चलता है। एनीवे यू मोस्ट वेलकम, प्लीज़ डू कंटिन्यू
1: जी। नज़्म का नाम हमेशा की तरह देसा है
0: जी,
1: मैं पेश करती हूँ
0: जी। बिस्मिल्लाह।
1: हो सकता है इस परस तुम्हारी याद धुंधला जाए और मेरा दिल अमान पा सके, जैसे तपती धूप से बचकर कोई थका मांदा इत्तफाकन साए में आ बैठता हो
0: जी।
1: हो सकता है ऐसा ना हो और मैं इस खिड़की में खड़े खड़े जहां अब मौजे नहीं होते, दिल के हाथों मजबूर हो जाऊं और वक्त के वापस पलटने की ख्वाहिश करूं। खिड़की की ओट में अब मेरा अक्स वैसा नहीं है, मगर फिराक की शिद्दत को महसूस करते हुए यह एतबार करना कि मैं ही हूँ। हो सकता है मैं इस बरस अगस्त में होने वाली बारिशों में से किसी एक बारिश की तेरहवीं बूंद बनकर तुम्हारी जमीन पर उतरूं या मेरा दिल उतरे, हो सकता है जुग्राफिया की हदों से माविरा होकर तुम्हारी जमीन पर जो जिंदगी में अधूरी छोड़ आई थी वो मुझे दोबारा जीना चाहती हो, और ये भी हो सकता है कि इस बरस भी ऐसा ना हो सके। तुम तो जानते हो कि तुमसे दूरी यानी ये अधूरी जुदाई एक सितम है जो मेरे दिल पर गिरा गुजरी। बलाए सितम ये कि डाउन टाउन की तरफ जाने वाले रास्ते अब भी मेरे दिल से हो गुजरते हैं। लफ्जों की नाप तोल में पड़े बिना मैं तुम पर हर बार सद हजार नज़में लिख सकती हूँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ
0: माशाल्लाह
1: कि तुम मेरी मुकम्मल दुआओं का एक नामुकम्मल नतीजा हो।
0: क्या बात,
1: तुम मेरी मुकम्मल दुआओं का एक नामुकम्मल नतीजा हो। बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत और बहुत बहुत अच्छा लगा जी। अल्लाह ताला हसरतें जो है हर एक की पूरी करे, और अफसोस है कि अभी तक वहाँ पे कोई अमन ना हुआ, वरना आपकी उदासी जरूर कम हो जाएगी। एनी वे इससे मिलता जुलता
1: जी
0: एनी वे इससे मिलता जुलता अगला गाना ही आपके नाम करता हूँ मैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। समीन ये थी मैडम कोकबली फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान, और ओरिजिनली वहाँ से भी हैं। गाना अगला लगा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, मगर बनता है आपके लिए गाना। ये दो दिन की ज़िंदगी में दुखड़े हैं बेशुमार, है ज़िंदगी उसी की जो हंस हंस के दे गुजार। मैडम कोकब जी आपके लिए, और ये पसंद थी जनाब राजनामे की लता मंगेशकर फिल्म पूनम।

0: वाह जी वाह, समझ समझ के समझ, कुछ ऐसी बात ही जी मुझे पता था ना कि मुझे समझ नहीं आएगी, समझ तो खराब नहीं अपनी ना, क्या करें जी। देखते हैं जी राज राम जी क्या कहते हैं जी। राज राम जी नमस्कार
1: भाई, हमको भी समझ आ गई कि हमारी बहना के लिए हमको इंतजार करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बहना आपको सभी खुशी मिले, सब जहाँ की सभी खुशी मिले, हम तो यही चाहते हैं। आप आओ, कोई ना कुछ हम कुछ ना कुछ सुनाओ, बस हम तो यही सुनने के लिए बैठे बिना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। घबराइएगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है आज हमारे भाई दिनेश पोपट साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे जल्दी। अभी भी टैक्सी क्या कहते हैं जी, मुझे भी 2-4 मिनट दे, मैं बस आया के आया, तो एक और इजाफा हो गया है। थैंक यू वेरी मच जी आपका भी।
1: हम तो चाहते हैं कि आओ, कोई ना कोई आओ, हमको कुछ ना कुछ सुनाओ।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ना आपका।
1: थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू जी। समीन आप भी चाहें कुछ कहना तो ज़रूर आ जाइए ना जी। हमारा टेलीफोन नंबर है 02381980072, एक्सटेंशन इसकी 3 है, जरूर दबाइएगा। अगर आपने व्हाट्सअप करना है तो वो आ जाइए जनाब 07784691440। और अशोक पटेल जी आप कहते हैं जी, आप कहते हैं जी एक लड़की से मुझको प्रीत है, उस लड़की का है नाम कला। क्या बात है, क्या बात है, सुनते हैं जी। फिल्म का नाम है सुहाग संदूर, मोहम्मद रफी पेश करते हैं।
2: लड़की से मुझे प्रीत है, मेरे जीवन की वो मीत है ना।

जी समीर, आप सुन रहे थे दिल दिया गल्ला। टाइगर जिंदा है फिल्म का नाम ये था जी, और गाने वाले थे आतिफ असलम। दिल से ही मिलता जुलता एक और गाना सुनाते हैं आपको। कहते हैं जी कृष्ण कुमार कुनत इनका नाम है, और के से मशहूर है इनका नाम जी। शॉर्ट लेते हैं, फिल्म है तुम मिले। कहते हैं जी दिल इबादत कर रहा है।

आइए अगला गाना आपको सुनवाता हूँ जी। नैन मिले चैन मिला, दिल वहीं तो है जहाँ। मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में जी, फिल्म संत बखार।

0: रौनक तुम्हें से दुनिया जी, रौनक तुम्हें से है जहाँ, क्या बात है जी। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुन रहे थे फिल्म पर आसमानी। जनाब भाई दिनेश बापट साहब जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद आप ही का गाना आ रहा है।
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: There's a big fire in the end of garden center in Hammersworth.
3: I can see a massive black plume of smoke.
4: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नतायज के बारे में सुनते हैं तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
5: After all the hullabaloo, you know you need a break and you want to save money on all your travel in 2026. The solution? Join the Sailaway Travel Club and get great deals and even cash back on cruises, holidays and excursions. And what's more, if you go to this radio station's website, you'll find a discount code that'll give you 25% off your membership fee. The Sailaway Travel Club, where travel is a pleasure, not a load of fat.

समीन वेलकम बैक, ये है रेडियो वाज़ एफ़एम साउथहैम्पटन, मैं हूँ हुसैन। अगला जो गाना आ रहा है जनाब, आपकी फरमाइश थी, आपकी खिदमत पेश करता हूँ। ये अपने भाई दानिश दिनेश पॉपिट साहब फ्रॉम कैंट लंदन से जी, आप सुनना चाहते हैं फिल्म आसका पंछी से सबीर सिंह की आवाज़ में। दिल मेरा एक आसका पंछी उड़ता है ऊँचे गगन पर,

छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी,

दिल मेरा एक पंछी जी, आज का पंछी फिल्म थी। आप ही की पसंद थी जनाब पापड़ साहब जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी कि आप ही ने भेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिकअप कम ही करता हूँ, वही करता हूँ जो आप भेजते हैं, और तकरीबन सभी की फरमाइशें जो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं मैं कि हर गाने में आप ही का या जिसने भी की हैं फरमाइशें जी उनका नाम लूँ, कभी कभी नाम नहीं भी लेता। आप एक एक आदमी ने अगर चार चार गानों की फरमाइश की हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं चार ही दफ़ा नाम लूँ। आप में से कुछ ऐसे हैं साथी जो कहते हैं जी हर गाने में हमारा नाम होना चाहिए, ऐसा मैं कर नहीं सकता। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन जिन्होंने अपने अपने पसंद के गाने सुने हैं जी, उनको पता चल जाता है कि उन्हीं के अपने गाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना सुनवाते हैं जी आपको। ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रही, मगर ये फरमाइश थी जी ओरिजिनली यास्मीन बानो जी, और ये आपकी भी फरमाइश है जनाब दिनेश पापड़ जी। आप दोनों के नाम पे गाना कर देता हूँ। मधुमती फिल्म से आई है लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़, दिल तड़प रहा है। अब एक ये पढ़ूँ, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा।

वेल नॉन फिल्म मधुमती से मुकेश और लता मंगेशकर को आपने सुना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इसे पसंद किया था। आइए आपको एक और गज़ल सुनाते हैं जी, यूँ समझिए हमारी पसंद आप सबके लिए है। मेहंदी हसन की आवाज़ है, फिल्म एक रात। कहते हैं जी एक बार चले आओ फिर आ के चले जाना। जी जी अभी 20 मिनट है ना, जो आना चाहते हैं ज़रूर आइए, टेलीफोन कीजिए 02381980072 एक्सटेंशन 3।

यास्मीन बानो जी आपकी पसंद आ रही है जी, गलत महमूद सुनना चाहती हैं आप लता मंगेशकर के साथ। फिल्म का नाम है यास्मीन, तुम अपनी याद भी दिल से बुला जाते तो अच्छा था।

सब्र बदर की कवाल से आपने कवाली सुनी, सजदे में जाकर देखो, और इस वक्त आप सुन रहे हैं ताजदार हरम। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। स्टूडियो का फोन नंबर 02381980072 02381980072। आपके डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट के लिए, और इस वक्त अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक लाइव पर भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। आइए चलते हैं अगली कवाली की तरफ, लेकिन जाने से पहले आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैं फिले कवाल का प्रोग्राम आपके लिए पेश करता हूँ एवरी ट्यूसडे शाम 6 से 8 बजे तक, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में यानी कि तकरीबन 6 से 7:30 के करीब आपके लिए पेश करता हूँ कुछ ट्रेडिशनल कवालिस, और उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक आपके लिए पेश करता हूँ कुछ फिल्मी कवालिस। और अगर आपके कुछ मनपसंद कवाली हो आप सुनना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 02381980072। आवाज़ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM एंड DAB डिजिटल। लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ अमजद साबरी के कवाल का आखिरी कलाम, करम मांगता हूँ।

साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ से ये कवाली आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। निगाह अली, थैंक यू सो मच, आपने हमें नॉटिंगहम से याद किया। आप सुन रहे हैं महफिल कवाली यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ, और मैं हूँ आपके साथ 8 बजे तक। अपने डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट के लिए अगर आप कॉल करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। चलते हैं अगली कवाली की तरफ, और ये है रिक्वेस्ट इश्क पाकिस्तान कवाली। तो लीजिए आपके लिए इश्क पाकिस्तान के बारे में आपके ये कवाली आपके लिए पेश करता हूँ। तो ये है रिक्वेस्ट अमजद साहब, थैंक यू सो मच, आपने रिक्वेस्ट किया है फेसबुक लाइव पर। तो लीजिए सुनते हैं ये कवाली।

मेरा इश्क है इश्क है पाकिस्तान, अपने आवाज़ अपन कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज़ आपके शहर में, सातम से नौ उसके इर्द गिर्द इलाकों में आप हमें सुन रहे हैं 99.8 FM, आवाज ऑफ एंड कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। अपने डेडिकेशन और रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 02381980072, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 07786914040 07786914040। और इस वक्त अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक लाइव पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपने डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हैं। चलते हैं अगली कवाली की तरफ। अब हम पेश करते हैं आपके लिए अजीज मियां साहब कवाल, तेरी सूहत निगाहों में।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
3: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
4: All right, no problem. We're on the way.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
6: वेलकम बैक टू आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर मैं हूं आपका होस्ट अली और आपका और मेरा साथ रहेगा 8 बजे तक इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कव्वाल यानी कि कव्वाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ और मैं हूं आपके साथ 8 बजे तक और अगर आप स्टूडियो में कांटेक्ट करना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 02381980072 पर दैट 02381980072 और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040 और इस वक्त अगर आप फेसबुक पे हो तो फेसबुक लाइव पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आवाज़ ऑफ़ कम्युनिटी रेडियो आपके लिए पेश किया जा रहा है नशे किया जा रहा है 99.8 एफएम साउथहैम्पटन और उसके इर्द गिर्द इलाकों में चलते हैं नेक्स्ट कवाली की तरफ और यह है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ उत्थे अमलां दे होने ने नबेरे किसे ने तेरी जात पूछनी

ने न बेरे किससे ने तेरी जात पूछनी। उस्ताद नुसरत अली खान साहब की आवाज़ से ये कवाली आपने सुनी। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम महफिल कवाल, यानी कि कवाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी कि अली के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट 8 बजे तक, और इस वक्त आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, जो कि नशर किया जा रहा है 99.8 FM साउथहैम्प्टन और उसके इर्द गिर्द इलाकों में। आवाज़ ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। खुश आमदीद करते हैं हमद अली बशर और RDJ रॉकवेज। खुश आमदीद हम करते हैं नसरीन अली, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक लाइव पर। तो आपके लिए पेश करता हूँ यह अगली कवाली। यह है आवाज़ एक बार फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़। तो आपके लिए पेश करता हूँ अब कवाली मेरे रक्षे कमर।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: वेलकम बैक टू आवाज़ FM कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं आवाज़ FM कम्युनिटी रेडियो awaazfm.co.uk पर 99.8 FM साउथहैम्पटन और उसके इर्द गिर्द इलाकों में। खुश आमदीद आप सबको करते हैं। 02381980072 हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर आपके डेडिकेशन और रिक्वेस्ट के लिए। चलते हैं अगली कवाली की तरफ। यह है अजीज नजा की आवाज़ चरता सूरज, और इसके बाद हम चलते हैं कुछ फिल्मी कवालीज की तरफ। अपने रिक्वेस्ट का मुझे भेज दीजिएगा फेसबुक लाइव पर एंड आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो साउथहैम्पटन। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072। मैं हूं आपका होस्ट अली और आपके साथ हूं 8 बजे तक।

चलता सूरज दे डल जाएगा धीरे धीरे। आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM साउथहैम्पटन और उसके इर्द गिर्द इलाकों में। आप सुन रहे हैं महफिल कव्वाल यानी के कव्वाली प्रोग्राम मेरे साथ यानी के अली के साथ, और मैं हूँ आपका होस्ट 8 बजे तक। चलते हैं कुछ फिल्मी कव्वालीज की तरफ, थोड़ा सा रुख बदलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक और चलते हैं आज के प्रोग्राम में। फिल्मी कव्वाली की पहली कव्वाली आपके लिए पेश करता हूँ

और आपके लिए पेश करता हूँ ये अगली कवाली। पिया हाजी अली, पिया हाजी अली।

शुक्रिया हाजी अली, आपने सुना ये कवाली। उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको पसंद आई होगी। आप सुने हैं आवाज ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। आवाज ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम महफिल कवाली, मेरे साथ यानी के अली के साथ। ये कवाली प्रोग्राम आपके लिए पेश करता हूँ 6 से 8 बजे तक एवरी ट्यूजडे, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे इस कवाली प्रोग्राम में भी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, 02381980072, और इसके अलावा फेसबुक पे आप मुझे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगली कॉली की तरफ, और यह है मूवी का नाम अल्लाह रखा, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ यह अगली कॉली। परवरदिगारे आलम, मुख्तार तुरे हैं हम।

मेरे रक्षक कमर आप हमें सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम। आइए चलते हैं अगली कवाली की तरफ और यह है एक बार फिर साबरी ब्रदर्स की आवाज़ से। ये कवाली बर्द जोली मेरी या मोहम्मद मूवी का नाम है, बजरंगी भाईजान।

अदनान समी खान साहब की आवाज़ से ये कवाली आपने सुनी। मूवी का नाम था बजरंगी भाईजान। इसके साथ ही अली को दीजिए इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, योर डेडिकेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आवाज़ ऑफ एंड कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में, और इस वक्त आपका शहर साउथहैम्पटन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: I took

0: I don't think there's any love lost between those two.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: This is Natalie DeLuccio and keep listening to Awaz FM.

जी है, मेरा गहरा हूँ नहीं, मेहनत किया अकेले मैंने, जज कर सकता तू नहीं, हम लिखते अंगारे बेटा, समझ मुझे फूल नहीं, जब किया मैंने खुद से तो गुरूर मुझे

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: This is Shweta Subramanian, and keep listening to Awaz FM. You guys are awesome.

0: forse mi sono per qui.
1: बे साले अभी मेरे लिए बोल रहे थे सब लोग डीनो डीनो, क्या हो गया? मैं हूँ हूँ बाकी हूँ मैं अभी यार, एक गाने से दल बदल गया सब लोग का. नहीं फैंटास्टिक.
2: यस सर.
1: ये ले. यू गाइस आर रेडी? सीधी बात करते हैं, दोनों घुमा फिरा के नहीं. लेट्स गो.
3: रहे हमेशा असल, न रुके कभी हसल, वी विनिंग. हम साथ मेरे हाथ दे के चल, न छोड़े कोई कसर, न टूटे हमें अटल.

0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Hours FM.

0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Hours FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Lighthouse International Church ki janib se haftawar masihi program Noore Khuda
5: Har Jumrat subah 8 se 9 baje
6: Noore Khuda
7: ہر ویروار سویرے 8 تو 9 بجے تک
8: نور خدا
4: آواز ریڈیو 99.8 ایف ایم پر
6: نور خدا
9: اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں مسیحی گیت اور غزلیں مسیحی شاعری اور کلام مقدس کی میٹھی میٹھی باتیں

0: from the South's premier city, this is Hours FM 99.8.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
0: You're listening to Hours FM.

0: हाँ, ये गाना भैया, ये तो मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट गाना है, मजा आ गया सुनने में, बहुत अच्छा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Hello, how are you? It's me, Yasser. You play any good song for me? Yeah, thank you.

0: हाँ ये गाना भैया, ये तो मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट गाना है, मजा आ गया सुनने में, बहुत अच्छा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: I wonder what you would do if you had the power to dream any dream you wanted to dream.
5: Southampton's Community Radio, Awaaz FM.
4: Fulfilling all your wishes. Music beyond belief.

0: one radio station. Play more music. We are your number one favorite station. Playing more music.
1: Oh, yeah.
0: We are your number one radio station. We only play the hits.
2: Ours FM.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 megahertz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
5: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: tick-tock. Hello, I'm Sapya Kaul. You are listening to Awaaz FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Everyone, it's me, Alina. Join me for Ruska Dusha, the program for stories, music and Russian culture. Every Saturday, 4 p.m. only on Awaaz FM 99.8. Привет всем! Это я, Алина. Присоединяйся ко мне на шоу «Русская душа», где мы делимся историями, музыкой и русской культурой. Каждую субботу в 4 часа на Awaaz FM 99.8. Remember, it's me, Alina. Русская душа, Saturday, 4 p.m. See you then.

0: आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले। गिटार बजा रहे जैक्सन की औलाद। पीपड़ी ने फूक ले हवानी भर दी के अंदर। ऑर्केस्ट्रा बजा।

0: दोस्तों, मैं हूं सीमा सरगम। मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर, आवाज खैरियों की क्लब every Sunday 6 to 8 p.m.
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046, or you can email info@oursfm.co.uk.
4: Hello, there's a big fire in the end of the garden centre in
5: जब आप अपनी कम्युनिटी में घर में लगने वाली आग, कार एक्सीडेंट या किसी और इमरजेंसी के तबाह कुन नताइज के बारे में सुनते हैं, तो आप जरूर सोचते होंगे कि काश आप इससे बचने के लिए कुछ कर सकते। बतौर एक फायर फाइटर, हम न सिर्फ आग बुझाते और लोगों की जानें बचाते हैं, बल्कि हम लोगों को ये समझने में भी मदद करते हैं कि इन इमरजेंसीज और इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जाए। इस जून एक तब्दीली लाएं, फायर फाइटर बने। फायर फाइटर बनने के बारे में मजीद मालूम हासिल करने और रिक्रूटमेंट के दिनों के बारे में जानने के लिए handsfire.gov.uk विजिट करें।
6: When you hear about the devastating impacts of a house fire, car crash, or other emergency in your community, do you wish you could do more to help? As a firefighter, you not only put out fires and rescue people, you also help people understand how to prevent emergencies and the harm they cause. Make a difference. Be a firefighter. Visit hantsfire.gov.uk to find out about becoming a firefighter and our upcoming recruitment open days.
4: All right, it's a big one. You have to hurry up, please.
7: All right, no problem. We're
8: from
7: on the
8: Wollstone
7: way.
8: To West End, from Milnbrook to Marchwood, this is Ours FM.